0: ऊर्जा तमत्तमा मगर की गुलता छेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुझन ना की चले
1: ओहो लिया लिछे रे
0: दिल दिया फील करें एफएम 90.4